0: जुगल चरण हम वंदना तर कर तर परमाथ जिसमें अमृत ज्ञान है मरण को भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाई जिन जित पंच बेकार तीन संतन का वंदना सिर चरणन पर तार एकंकार सतगुरु तिह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ दोहरा

ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत सह लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सजन सीसड़ियाँ ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर करे हो पहुँचा सदरे नित पुअन सदन हारा सिमरिय नानक से देवन रागासा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय घर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विश्वे जस्या कड़िया पहरा थिती वारी माहो हुआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेस।

दुख जाय। नानक बोला सहज सुभाई, चार पदार्थ जे को मांगा साजन किसी वाल आ गए। जे को अपना दुख मिटावे हर हना वृद्धा सदगावे। जे को अपने सुबह रूरा सा संगे हाँ मैं छोरा है।

ध्यान जिह प्रसाद आचार व्यवहारित प्रसाद प्रसाद रसुंदर रूप सुप्रभ सिमरह सदान उज प्रसाद जात सुप्रभ सिमर सदन रात जय प्रसाद तेरी पात्र हंगर प्रसाद नानक जास कह जय प्रसाद स्नेह करण नाद जय प्रसाद बिख विस्मार जय प्रसाद बोले हमृत रसनाय जय प्रसाद सुख सहज वसनाय जय प्रसाद हस्त कर चल जय प्रसाद संपूर्ण फलाय

ब्रह्म ज्ञान जान ब्रह्म ज्ञान का अंतरा पाय नान ब्रह्म ज्ञान को सद नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ को करता ब्रह्म ज्ञान साध जीवन हमरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म

है। श्री अकाल स्वामी के लिए विकसा अंतर्जामी जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि और न आवे। कहूँ मैं नुखती कहूँ आवे, जो देह पावे सोई करावे। उसका हाथ हुए न सब किस लिए, जो देह पावे सोई करिया न जा।

गणेशपति जिसके अंतर राज अवमान सोनर पति स्वयं जो जान में जो गुणवंत सोवत विष्ट का जनता उसका कर्मवंत कहवे जन्म वर वह जोन प्रमावे तन कुम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीब सवनर की हम मुक्ता का सुपाव तनवंत कर कृपावे तृण समान काश संग न जावे बहलस कर मान कुपर कर आस पर पितरता को ही बना सब दया जाना बलवंत खेन वह हो जा बसवंत के सना बाधा आप अहंकारी धर्म राय करे कुवारी गुरु प्रसाद जा कमट अब मान सो जाना दर्ग।

प्रकाश कर सोई सुखमान पुल काहे फिरया जान। कौन वस्ते आई तेरा संग लवट रहे रास लोभी पतंग। राम नाम जब हृदय मह नानक पात सिद्धि कर जह जस वखर को लैन तुए। राम नाम संदन कर पाया ताज अवमान लिहु मन मूल। राम नाम

गजानन तुम शरण पुरख भगवान सर्व कुंठ मुग्ध मोह पाई निम हर गुण गाई अनकराज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन पाई व भोजन का प्रसंगी।

के सर्वत्र, मानना के सर्वत्र, इंद्रा के सर्वत्र, चंद्रा के सर्वं कली मैं के परमं पही मैं के आकल अला मैं के साब कला मैं के उसनल वजूहा तमामल रजूहा हमें सुल सलाम श्रीखुत मदामा गनीमुल सकस्ता गरीबुल परस्ता बिलंदल मकाना जमीनुल जमाना तमीजुल तमामा रजूअल निदाना हरीफुल अजीम रजायक सकीना निकुल त्रंग है भेद है भंग है जीजुल निवाज है गनीमुल खराज है नरुक्त स्वरूप है त्रमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा सुजुक सुदा है सदाव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त पराजा सदा सर्वसाजा समस्त सलाम।

को आ संघरिया पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेव सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आपादा मुझा बरिया मरण काल का त्रास निवरिया हो जो सदा हमारे पच्छा श्रिय तुझो करियो रक्षा राख लियो मुई राखन हारी साहब सुन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जौन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू चियो जौन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जौन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदन ते कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सागुन सो दियो सत्रन को पल मोबद कियो घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीत पछाण जीती ते कुंचरे स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जा बुध कर करा करतारा प्रजा धरता देह अपारा जा ब्या कर करत हो कब हूँ तुम मैं मृत देह तार सब हूँ जेते बदल।

बार चौपाई को कहा चौपाई संबत सत्रह साष्ट निध्या अर्ध साष सुन तीन कहिजा भाद्रव सूर्य अष्टमी रव बारा ती सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जापती तुमरे तापती कुआ करे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण पुराण ने कह माती एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब भेद कया मैं एक न जान्यो श्री स्पान कर।

लाए से हर हर सदा त्यावे जिसनों कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे कहा नानक सत्य साहिब जो भावा तिवा चलावे यो सोहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया यो तिनका मन वसया जिन घरों लिखया आया एक फिरे कनेरे करिए गला गली कनै न पाया कहा नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पित होए सेजना जिनी हर त्याया पित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित्र माता पिता कुटाम सह सुपित संगत सबाइया कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया कहा नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजावन सहज सहसा ना जाय न जाय सहसा कथा संयम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कत संयम धोता जाए मान धोव हो शब्द लाग हो हर स्यो रह हो चित लाए का नानक गुर प्रसादी सहज उपजा ए सहसा बजाए जियो हो मैले बार हो निर्मल बार हो निर्मल जियो हो ता मैले तिनी जन्म जुआ हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम तुम सो सुने नाही फिरे ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया जी ओह निर्मल बार ओह निर्मल बार ओह ता निर्मल जी ओह निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी।

उपदेश बख्शिश कर रहे ने, जो गुरु कह रहे ने उनू पहला तो सुनियो फिर मन लियो। जो गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा वह सुनिया तो उन्हू मन लिया, तो मनिया तो गुरु अमरदास महाराज जी ने अपना बना।

0: ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द को जान पियो नानक का दास सुरेंद्र रंजन दियो मोहल्ला दूजा
1: एक कृष्ण सर्व देव।